कुल 8 अफराद हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि हलाक शुदगान में से कुछ सैलाब ज़दा सड़कों पर पाए गए, दीगर गाड़ियों के अंदर फंस गए थे। दूसरी जानिब जुमेरात को शदीद बारिश की वजह से ट्रेन और बस सर्विस मुअत्तल कर दिए जाने के नतीजे में चीबा प्रीफेक्चर के नारिता हवाई अड्डे पर फंस कर रह जाने वाले 7,000 तक अफराद को वहीं रात गुजारना पड़ी। कुछ मुसाफरों को हवाई अड्डे के टर्मिनल्स के अंदर आम लोगों के लिए ममनू जगहों पर रात गुजारने की इजाज़त दी गई। टोक्यो से बाहर वाक़ इस मरकजी हवाई अड्डे के मुंतजमीन ने खाना, पानी और स्लीपिंग बैग फराहम किए। जुमे की सुबह जब ट्रेनें और बसें बहाल हुईं तो सवारी के लिए लोगों ने लंबी कतारें लगाईं। सान फ्रांसिस्को से ताल्लुक़ रखने वाली एक सयाह ने बताया कि वो बहुत थकी हुई हैं क्योंकि तवील परवास के बाद उन्हें रात हवाई अड्डे पर गुजारना पड़ी। उन्होंने कहा कि वो सोच रही हैं कि क्या वो आसानी से ट्रेन में सवार हो सकेंगी क्योंकि बहुत से लोग टोक्यो जा रहे हैं। जापानी हुकूमत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के उन 4 जजीरों में से एक के दौरे के खिलाफ जवाबी इकदाम पर गौर करने का इरादा रखती है जिन पर रूस का कंट्रोल और जापान का मलकियती दावा है। एक मुमकिन इकदाम मौजूदा पाबंदियों को तकवीत देना है जो टोक्यो ने रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ बैन अक्वामी बरदारी के साथ मिलकर मास्को पर पहले ही आयद कर रखी हैं। इन जजायर को जापान में शिमाली इलाका जात कहा जाता है। जापानी हुकूमत का मुस्तकिल मौकिफ है कि मस्कूरा जजायर जापानी सरजमीन का मौरूसी हिस्सा है। उसका कहना है कि इन जजायर पर दूसरी जंग अजीम के बाद गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया था। जापानी वजीर आजम थाकायची सनाई ने मस्कूरा जजायर में से एक एतोरुफ के पुतिन के दौरे पर जुमेरात को इजहार ख्याल करते हुए जोर दिया कि ये जजायर तारीखी हकायक की रोशनी में और बैन अक्वामी कानून की बुनियाद पर जापान का मौरूसी इलाका है। थाकायची ने वाजे किया कि मौजूदा रूसी सदर का दौरा इन जजायर से मुतल्लिक हुकूमत जापान के मुस्तकिल मौकिफ से मुताबकत नहीं रखता।

ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाकाबंदी बरकरार रख सकती है। उनका ये तबसरा एक ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की शर्त के तौर पर नाकाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। जुमेरात को नामा निगारों से बात करते हुए हेगसेथ ने कहा कि अमरीका बहरी जहाज़ों को बारी बारी तैनात करेगा और नाकाबंदी जारी रखेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए बताया है कि उनका मुल्क USS अब्राहम लिंकन की जगह जौहरी ताकत से चलने वाले तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन को मशरक़ वुस्ता भेजने की तैयारी कर रहा है। इस अखबार ने कहा है कि टोक्यो के करीब योकोसुका में तैनात जॉर्ज वाशिंगटन इस हफ्ते आबनाए मलाका से गुजरा। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के मंजरनामे पर गैर यकीनी सूरत हाल में जहाज़ रानी पर असरात बढ़ रहे हैं। जापान ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों का पता लगाने का एक नया निज़ाम फराहम किया है जो सेंसर से लैस ड्रोन और मस्नूई जहानत से तज्जिया करने की सलाहियत का हामिल है। यूक्रेन को उन इलाकों में ज़मीन में दबी बारूदी सुरंगों को हटाने के बड़े चैलेंज का सामना है जिन पर रूस ने हमला किया था। जापान बैनुल अक्वामी तआवुन एजेंसी जायका के यूक्रेन में कायम दफ्तर ने जुमेरात को दारुल हुकूमत कीफ में एक तकरीब के दौरान यह निज़ाम यूक्रेन की हुकूमत के हवाले किया। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अव्वल नायब सरबराह ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उनका मुल्क लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जापानी इमदाद का भरपूर इस्तेमाल करेगा। इस निज़ाम में एक ड्रोन शामिल है जो तकरीबन 3 मीटर की बुलंदी पर परवाज करते हुए ज़मीनी सतह और ज़ेर ज़मीन हालात का मिकनतीसी सेंसर और ऑप्टिकल कैमरे से सर्वे करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जमा की गई मालूमात का नक्शा बनाने के लिए AI तज्जिया किया जाता है जिसमें इंतहाई दुरुस्तगी से उन जगहों की निशानदही की जाती है जहां बारूदी सुरंगें और दीगर अनफटे हथियार मौजूद हैं। रिवायती तौर पर बारूदी सुरंगें साफ करने वाला अमला रिहायशियों के साथ इंटरव्यूज़ और दीगर

0: तरीकों से बारूदी सुरंगों की शनाख्त करने की कोशिश करता आया है। जापान की खलाई एजेंसी जाक्सा ने मरीख के एक चांद के लिए एक तहकीकी खलाई जहाज को मीडिया के सामने पेश किया है। ये मिशन जल्द अज जल्द मौसम खिजा में शुरू किया जाना है। इसका मकसद चांद फोबोस की सतह के पहले नमूनों को ज़मीन पर वापस लाना है। मीडिया के अरकान को मरीख के चांदों के तहकीकी खलाई जहाज या MMX दिखाने के लिए जुमेरात के रोज़ तानेगाशीमा खलाई मरकज में मदऊ किया गया था। जाक्सा ने इस जहाज को तैयार करने पर तकरीबन $347 मिलियन खर्च किए हैं, जिसके बारे में उसे उम्मीद है कि ये मरीख के चांद पर उतरने और सतह के नमूने वापस लाने की दुनिया की पहली कामयाब कोशिश होगी। इस तहकीकी जहाज के 3 मॉड्यूल हैं, जिनकी मजमू लंबाई 5.3 मीटर और वजन 4.4 टन से ज्यादा है। इन मॉड्यूल में से एक, जिसमें इंजन और फ्यूल टैंक है, मरीख के चांद के सफर में इस्तेमाल किया जाना है। मीडिया को दिखाए जाते वक्त इस हिस्से को दीगर 2 से अलग रखा गया था। दूसरा मॉड्यूल तहकीक के लिए है। फोबोस पर उतरने के लिए इसकी 4 टांगे हैं और इसमें एक आला लगा हुआ है जो सतह के नमूने जमा करने और मुशाहदे के आलात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा मॉड्यूल वापसी के सफर के लिए है। इसमें जमाशुदा नमूनों को रखने के लिए एक कैप्सूल है। ये मॉड्यूल जाक्सा और NHK के मुश्तरका तैयार करदा सुपर हाई डेफिनेशन कैमरों से भी लैस है।
1: आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के चीबा प्रीफेक्चर में जुमे के चंद इब्तदाई घंटों तक रिकॉर्ड मिकदार में बारिश हुई है। जापानी हुकूमत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के उन 4 जजायर में से एक के दौरे के खिलाफ जवाबी इकदाम करने पर गौर करने का इरादा रखती है, जिन पर रूस का कंट्रोल और जापान का मलकियती दावा है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।